0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா மலய ஜ சீதலா.

0: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे।

0: विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
0: पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: একটু পরেই খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচকঃ পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्धत्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्य सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमम् उत्तरदायित्वं विद्यार्थिनां शैक्षणिकवर्षस्य संरक्षणम् आसीत्। अत एव परीक्षाणाम् अविलम्बेन आयोजनम् अत्यावश्यकम् आसीत्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनं न लघु विषयः, अपि तु एतेन लक्षशः विद्यार्थिना तेषाम् अभिभावकाश्च अत्यन्तं पीडिताः अभवन्। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रारता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट नगरस्य विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र रोमानिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा इली बोलोजान इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। सा रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर दारी इत्यनेन सह भारत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के

0: अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। TK अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately. The Prime Minister said, yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts.
2: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: The Prime Minister said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. He said as the second week of parliament begins on Monday, government will make every effort

0: একটু পর শুনবেন সংবাদ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद

0: पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455

0: कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।

0: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania signed 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said, "This draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today." He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
6: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सत्र

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 9:10 और एग्जैक्टली अभी 9:11 और इसी के साथ मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा। इस सुहानी सुबह में उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन मुस्कुराहटों से भरा होगा। अगर दिन थोड़ा थका देने वाला भी हो तो अगले एक घंटे तक संगीत, बातें और कुछ खूबसूरत एहसास मिलकर उस थकान को जरूर कम कर देंगे। यही तो खासियत है संगीत की, ये बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। आज की रसधारा एक ऐसे विषय को समर्पित है जो हम सभी से जुड़ा है। अक्सर जब इसका नाम सुनते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ दफ्तरों, कागजों या कुछ गिने चुने लोगों की बात होगी, लेकिन सच ये है कि इसका रिश्ता हम सबके जीवन से है। आज है आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे, और इसी अवसर पर बात करेंगे जिम्मेदार नागरिक होने की।

जिम्मेदार नागरिक कितना सरल शब्द सा शब्द है ना, लेकिन इसके भीतर पूरा एक जीवन दर्शन समाया हुआ है। जिम्मेदारी का मतलब केवल बड़े बड़े काम करना नहीं होता, कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने का भी जिम्मेदारी होती है, कभी अपने आसपास सफाई रखने की भी, कभी नियमों का पालन करने में, और कभी अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को याद रखने में भी। मौसम का है। हम सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, अच्छी सड़कें हो, बेहतर अस्पताल हो, बच्चों के लिए अच्छे विद्यालय हो, आधुनिक रेल और हवाई सेवाएं हो, सुरक्षित वातावरण हो और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन ये सब किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं होता, ये करोड़ों लोगों की भागीदारी से बनता है। हर नागरिक अपने हिस्से का योगदान देता है और यही छोटे छोटे योगदान मिलकर विकास की बड़ी तस्वीर भी बनाते हैं।

यही वजह है कि आज का दिन केवल एक औपचारिक अवसर नहीं बल्कि आत्म मंथन का भी दिन है। ये सोचने का दिन है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि देश केवल नक्शे पर बनी सीमाओं का नाम नहीं है, देश उन लोगों का नाम है जो उसमें रहते हैं, सपने देखते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। कहते हैं किसी भी परिवार की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियां कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। बिल्कुल यही बात एक राष्ट्र पर भी लागू होती है। जब नागरिक अपने दायित्व समझते हैं तब राष्ट्र भी मजबूत होता है।

आयकर दिवस हमें यही याद दिलाता है कि जिन लोगों की आय का कर योग्य है उनके लिए समय पर और सही तरीके से आयकर का भुगतान केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एक माध्यम भी है। इससे देश के विकास के लिए आवश्यक संसाधन जुटते हैं और अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को गति भी मिलती है। लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने की परिभाषा इससे कहीं बड़ी है। अगर हम समय पर मतदान करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, पानी और बिजली का दुरुपयोग नहीं करते, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखते हैं, तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों बात कर रहे थे जिम्मेदार नागरिक होने की, क्योंकि आज है इनकम टैक्स डे। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। एक दीपक अंधकार को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, लेकिन रोशनी की शुरुआत जरूर कर देती है। उसी तरह एक जिम्मेदार नागरिक पूरे देश को नहीं बदल सकता, लेकिन बदलाव की दिशा जरूर तय कर सकता है। जिम्मेदारी का संबंध केवल कानून से नहीं बल्कि संस्कारों से भी होता है। बचपन में जब हमें सिखाया जाता है कि किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपना काम समय पर करना चाहिए, तो वही छोटी छोटी बातें बड़े होकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह ईमानदारी भी कोई अचानक आने वाली आदत नहीं है, ये धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनती है। जब ईमानदारी व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देती है तो उसका लाभ केवल उसे नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलता है। आज तकनीक ने बहुत कुछ आसान बनाया है। अब कई सरकारी सेवाएं डिजिटल हो चुकी है, घर बैठे अनेक काम पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसे पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का समय भी बचा है। लेकिन किसी भी व्यवस्था की असली ताकत तकनीक नहीं है बल्कि उसे सही भावना से अपनाने वाले लोग होते हैं। यही कारण है कि जब नागरिक जागरूक होते हैं तो व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बनती है। एक बार फिर आपका स्वागत है रजधारा में। अभी स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया 9:33 का, और जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया उन्हें बता दूं कि आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी कार्यक्रम रजधारा, और बात हो रही है आज इनकम टैक्स डे पर जिम्मेदार नागरिक की।

दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर ही रहा है। ये सवाल जरूरी भी है क्योंकि हर नागरिक बेहतर सुविधाओं, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद करता है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा सवाल भी उतना ही जरूरी है, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। ये सवाल किसी परीक्षा का नहीं बल्कि आत्म मंथन का है, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्यों के बारे में सोचते हैं तभी अधिकारों का महत्व भी और बढ़ जाता है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हम ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी के बीज बोएंगे तो आने वाली पीढ़ियां विश्वास, विकास और समृद्धि की फसल भी बोएगी। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावे, अलग अलग खान पान, अलग अलग परंपराएं, लेकिन इन सबके बीच एक चीज हमें एक सूत्र में बांधती है और वो है भारत के नागरिक होने का एक सूत्र। यही गर्व हमें प्रेरित करता है कि जहां भी हो, जिस भी क्षेत्र में हो, अपना काम पूरी निष्ठा से करें। एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ाता है तो वो केवल किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि भविष्य गढ़ता है। एक डॉक्टर केवल इलाज नहीं करता बल्कि उम्मीद लौटाता है। एक किसान केवल अनाज नहीं उगाता बल्कि करोड़ों लोगों का पेट भरता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने आर्थिक दायित्वों का ईमानदारी से पालन करता है तो उसका योगदान भी देश की प्रगति की कहानी में शामिल हो जाता है। राष्ट्र निर्माण में हर योगदान का अपना महत्व होता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो।

दोस्तों, जिम्मेदारी का अर्थ केवल कानून का पालन करना नहीं, जिम्मेदारी का अर्थ संवेदनशील होना है। अगर सड़क पर कोई घायल दिखाई दे और हम उसकी मदद करें, अगर पानी की टोटी खुली दिखे उसमें उसको बंद कर दे, अगर किसी सार्वजनिक स्थान को साफ रखे, अगर किसी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करे, तो ये सब छोटी बातें लग सकती है, लेकिन यही बातें समाज का चरित्र भी बनाती है। देश का चरित्र उनके नागरिकों से बनता है। एक अच्छी आदत दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाती है। एक सही कदम कई लोगों को सही रास्ता दिखा देता है। इसलिए कहा जाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है।

दोस्तों, तकनीक ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया। बैंकिंग हो, भुगतान हो, दस्तावेज हो या सरकारी सेवाएं, बहुत कुछ अब मोबाइल पे स्क्रीन पर उपलब्ध है। इस बदलाव ने न केवल सुविधा ही दी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाई, और जब व्यवस्था पारदर्शी हो तो लोगों का विश्वास भी मजबूत होता है। विश्वास, यही वो शब्द है जिस पर हर रिश्ता टिका होता है, परिवार का रिश्ता भी, समाज का रिश्ता भी, और नागरिक तथा राष्ट्र का रिश्ता भी। जब विश्वास मजबूत हो तब विकास की रफ्तार भी तेज होती है। हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वही आने वाले भारत की तस्वीर होती है। अगर बच्चे अपने घर में ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी देखते हैं तो उन्हें अलग से ये सब सिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि संस्कार किताबों में कम और व्यवहार में ज्यादा होता है।

रहे ना रहे। दोस्तों आज के इस महफिल को समेटने का समय धीरे धीरे आ गया है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात। जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते भी ध्यान रखते हैं ना, ठीक उसी तरह एक मजबूत और विकसित भारत की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपने कर्तव्यों के रास्ते पर भी चलना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम ऐसे ही अपने कर्तव्यों की राह पे चलते रहें और हमारे देश को विकसित करते रहें। मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी ठीक दोपहर के 12 बजे कार्यक्रम सुरभि के साथ। अब तक के लिए मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1000 आर की रोहस पर यह आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। थोड़ी देर में अगला प्रोग्राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। श्री वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस समाप्त करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक छात्र की मौत हो गई और पुलिस ने छात्र की मां की शिकायत के बावजूद FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री एली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। फिर रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के

0: अध्यक्ष मिर्चा अब्द्रुयान और चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष सोनिन गिनरेनू से मुलाकात करेंगे। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के तेज होने और यमन में होती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले के बाद एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग खतरे में पड़ गया है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कल 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में नेक और सदाचारी विचारों तथा कार्यों के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और वाणी के माध्यम से जिस बात का निरंतर अनुसरण करता है वही उसके कल्याण को निर्धारित करता है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशाल वाहक लवलीना बोरगोहन के नेतृत्व में भारतीय दल ने लघु तिरंगे लहराते हुए स्पॉट से अरेना में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: I know that the paper leak is not a normal issue. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anu Grover Balega at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear the cases under the Public Examinations Act along with the connected offences. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in the examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Delhi Metro Rail Corporation DMRC has announced the closure of 17 metro stations today until further notice due to security reasons in the national capital. These stations include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, RK Ashram Marg, Barakhamba Road, Mandi House, Central Secretariat, IT

297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता, जिस पर आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन के सफर में आज आपके साथ आपकी मेजबान सोफिया शेरी। आप सबों को सोफिया का पुरखलोस आदाब। घड़ी में वक्त हुआ है 10:16:30 यानी कि शराय प्रोग्राम की पहली पेशकश आईना का। और आपको बता दूं कि आज हम आईना में लेकर आए इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे यानी बैन अक्वामी योम खुद निगहदाश्त का दिन।

24 जुलाई को हर साल दुनिया भर में बैन अक्वामी यौम खुद निगहदाश्त मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में अपनी जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती सेहत की हिफाजत के बारे में शऊर पैदा करना है। इस दिन का पैगाम है कि हर इंसान अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद भी महसूस करे और ऐसी आदत अपनाए जो इसे सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी गुजारने में मदद दे। खुद निगहदाश्त का मतलब सिर्फ बीमारी के वक्त इलाज करवाना नहीं बल्कि बीमारी से पहले एहतियात करना भी है। मुतवाजन गजा का इस्तेमाल, रोजाना वर्जिश, मुनासिब नींद, सफाई का ख्याल, वक्त पर तिब्बी मुआयना, जहनी दबाव से बचाव, मस्बत सोच और अच्छी आदत खुद को निगहदाश्त का अहम हिस्सा है। इसके साथ साथ मोबाइल और सोशल मीडिया के गैर जरूरी इस्तेमाल से बचना, खानदान के साथ वक्त गुजारना और अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। आज की मसरूफ जिंदगी में लोग अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके नतीजे में मुख्तलिफ जिस्मानी और जहनी बीमारियां बेदार पैदा हो जाती हैं। अगर हम रोजाना थोड़ा सा वक्त अपनी सेहत, वर्जिश, आराम और मुतवाजन तर्ज जिंदगी के लिए निकालें तो न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशगवार और कारामद भी बना सकते हैं। बैन अक्वामी यौम खुद निगहदाश्त हमें यह पैगाम देता है कि सेहत

सबसे बड़ी नेमत है, लिहाजा हमें अपनी सेहत की हिफाजत को अपनी अव्वलिन जिम्मेदारी समझना चाहिए, क्योंकि एक सेहतमंद फर्द ही एक मजबूत खानदान, खुशहाल माशरे और तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद बनता है।

और अब चलिए थोड़ी नज़र डालते हैं आज के मंजरनामा पर। आज के मंजरनामा का हमारा मौजू है इंटरनेशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल हेल्प फॉर माइनॉरिटीज़, यानी अकलौतों के लिए माली इमदाद और कर्जा जाती मुआवनत। अकलियतों के लिए माली इमदाद और कर्जा जाती मुआवनत में समाज अकलियतों की समाजी और माशी तरक्की किसी भी मुल्क की मजमू तरक्की के लिए नहायत अहम है। बहुत से बासलाहियत अफराद सिर्फ माली वसाइल की कमी की वजह से अपनी तालीमी कारोबार या रोजगार के मौके से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाते। ऐसे में कर्जा जाती मुआवनत, क्रेडिट सपोर्ट और माली इमदाद इनके लिए खुद किफालत और बाख्तियार बनने का मौसे जरिया होती है। माली मावन यानी फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए अकलियती तबके के यानी माइनॉरिटीज़ के लिए अफराद के छोटे छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं, मौजूदा कारोबार को वसत दे सकते हैं, जदीद हुनर सीख सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। कम शरह सूद पर कर्ज, आसान इकसात मनी और सरकारी मालियाती स्कीमें और नौजवानों ख़वातीन को रोज़गार के नए मौक़े फ़राहम करती हैं और इन्हें दूसरों पर इन्हसार करने के बजाय ख़ुद रोज़गार इख्तियार करने की तरगीब देती हैं। इसके अलावा माली ख़वानदगी फाइनेंशियल लिटरेसी भी बेहद ज़रूरी है ताकि लोग कर्ज का दुरुस्त इस्तेमाल करें, बरवक्त अदायगी करें और अपनी माली मनसूबाबंदी बेहतर अंदाज में कर सकें। हुकूमत मालियाती इदारों और समाजी तंजीमों को चाहिए कि अकलियतों तक कर्ज जाती सहूलियात और मुतालिका मालूमात आसानी से पहुँच सकें। हुकूमत हिंद ने अकलियती बरदरी की माशी तरक्की, खुद रोज़गारी और माली शमूलियत फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मुख्तलिफ स्कीमें और पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई हैं। आइए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। पहली स्कीम नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, यह हुकूमत हिंद की एक अहम मालियाती तंजीम है जो वज़ारत अकलियती अमूर के तहत काम करती है। इसका मकसद माशी तौर पर कमज़ोर अकलियती तबका माइनॉरिटीज़ को कम शरह सूद पर कर्ज फ्राहम करना है ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, इसे वसत दे सकें और रोज़गार हासिल कर सकें। टर्म लोन स्कीम छोटे और दरमियानी कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए कर्ज है। माइक्रो फाइनेंस स्कीम गरीब खानदानों खसूस ख़वातीन के लिए छोटे कर्जे हैं। एजुकेशनल लोन स्कीम आला तालीम और पेशा वाराना कोर्सेज के लिए ये तालीमी कर्ज है। वोकेशनल ट्रेनिंग हुनरमंदी की तरबियत के लिए भी ये स्कीम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस स्कीम के तहत छोटे कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के शिशु किशोर और तरुण जुमरों में बगैर जमानत

0: ने मिलाकर हम एक लफ्ज में सैप कहते हैं। ये सैप की मुंतकली यानी ट्रांसपोर्ट रूट से पत्तियों यानी लीफ तक होती है।
1: अच्छा।
0: और पौधे जो अपनी गजा तैयार करते हैं
1: जी,
0: वो सारे गजाई मादे उसके फ्लोएम टिश्यू के जरिया पौधे के जिस्म के हर एक हिस्से तक पहुंचती है।
1: अच्छा।
0: गोया जाइलम और फ्लोएम ये दो ऐसे टिश्यूज हैं
1: जी
0: जो पौधों में पानी, मादिनियात और गजाई मादों के कंडक्शन यानी मुंतकली या ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदार हैं।
1: तो गोया आप ये कहना चाहते हैं कि जाइलम हो या फ्लोएम हो, ये एक पौधे के लिए या एक दरख्त के लिए इंतहाई जरूरी चीज है।
0: इंतहाई जरूरी है, बेशक
1: जी। अब बात जब जाइलम टिश्यू और इसकी सैप की हुई, तो सैप या रकीक मादा है क्या?
0: जैसा कि मैंने बताया कि पौधे मिट्टी से पानी और मिनरल्स जज्ब करते हैं
1: जी।
0: पानी में डिजॉल्व ये मिनरल्स एक ऐसा सॉल्यूशन बनाती है जिसे सैप कहा जाता है
1: जी।
0: और पानी और मिनरल्स के इस सॉल्यूशन को, इस सैप को पौधे जाइलम बाफ्त के जरिया रूट से लीफ तक पहुंचाते हैं।
1: ये जज्ब कहाँ से कर रहे हैं?
0: पौधे पानी को जज्ब कर रहे हैं मिट्टी से, और उसके तने के अंदर जो जाइलम बाफ्त होते हैं
1: जी,
0: उन तनों के जाइलम बाफ्त के जरिया वो उन जज्बशुदा पानी और मिनरल्स को अपने पत्तियों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उसे इस्तेमाल करके पत्तियां नूरी तरकीब के अमल के जरिया अपनी गजा तैयार कर सके।
1: अब ये भी बताते चलें सर कि ये जाइलम टिश्यू कहाँ पाया जाता है? एक दरख्त के अंदर?
0: जाइलम टिश्यू एक दरख्त है
1: जी।
0: दरख्त का जो तना होता है
1: जी,
0: उस तने को अगर हम लोग काटेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन
1: जी,
0: तो उसमें हमें जाइलम बाफ्त मिलेगा।
1: वो आमतौर पर समझ में मैंने आने वाली चीज है कि ये जाइलम टिश्यू है या
0: जी? वो बाहर से नहीं दिखेगा
1: जी।
0: जाइलम टिश्यू को देखने के लिए आपको तने का ट्रांसवर्स सेक्शन, पौधे का तने का स्टेम का हिस्सा लेकर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटकर माइक्रोस्कोप में देखना होगा, तभी वो जाइलम बाफ दिखेंगे
1: जी। जी,
0: बाहर से जाइलम बाफ को दिखना मुमकिन नहीं है।
1: सर ऐसा कह के कि आपने तो मेरी वो दिलचस्पी को और बढ़ा दी सर, तो अब ये बताइए कि मान लीजिए कि इन चीजों को देखना है तो आप कैसे देखेंगे, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी सर?
0: जी, इसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी
1: जी।
0: उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक परमानेंट स्लाइड बनाकर जाइलम बाफ्त का अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जाइलम बाफ्त यानी जाइलम टिश्यू बिल्कुल आया नजर आएगी, और उसके सारे कंपोनेंट्स जैसे ट्रैकीट्स, ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, वो सारी चीजें नजर आएंगी।
1: यकीन तौर पर इतनी तफसील तो हम लोगों ने अपने स्कूल के ज़माने में भी मतलब नहीं पढ़ा था, जो आज जानने का मौका मिल रहा है।
0: शुक्रिया।
1: तो अब ये भी बता दीजिए सर कि इसका तरीका कार क्या है सर, कैसे इसको करेंगे?
0: इस तजुर्बा को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उन चीज़ों में सबसे पहले दो पानी से भरी हुई शीशे की गिलास चाहिए, एक रेड कलर का स्टेन जिसे योसिन स्टेन कहते हैं वो चाहिए
1: जी,
0: और दो पौधा चाहिए, छोटे साइज का पौधा जिसको हम लोग ग्लास में रख करके अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करें।
1: कोई भी पौधा जी।
0: अब दोनों शीशे के ग्लास जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी को पूरा नहीं भरना है
1: जी,
0: आधे से थोड़े ज्यादा रखना है।
1: अच्छा।
0: और दोनों ग्लास में से एक ग्लास के पानी में 4 से 5 ड्रॉप एओसिन स्टेन डाल देना है, लाल रंग का एओसिन स्टेन होता है, एक ग्लास में डालना है, एक ग्लास में नहीं डालना।
1: अच्छा, ये कोई खास वजह है लाल रंग का वो डालना?
0: वजह है कि हम जानना चाहते हैं कि जाइलम बाफ्त के जरिया ही पानी और मादिनियात यानी सैप का ट्रांसपोर्ट होता है, इसके प्रूफ करने के लिए ही ये एओसिन की मदद ली गई है।
1: अच्छा, ताकि वो नुमाया तौर पर
0: जाहिर हो, नुमाया तौर पर जाहिर हो और उसे हम अपने आंखों से देख सके। यस। तो उसके लिए दोनों ग्लास में पानी आधे से ज्यादा भरना है, दोनों ग्लास में एक एक पौधा लेना है, और एक ग्लास में योसिन डाला होगा, दूसरे ग्लास में योसिन डाला नहीं होगा, यानी लाल रंग का
1: जी
0: योसिन जो लिक्विड एक स्टेन है
1: जी, जी,
0: वो एक ग्लास में डाला होगा, दूसरे में डाला नहीं होगा। जिस ग्लास में हम 4-5 कतरा एओसिन का डालते हैं, उसका पानी पूरा सुर्ख हो जाता है और दूसरे ग्लास का पानी

0: ट्रांसपेरेंट होता है जो पानी का कलर होता है
1: जी।
0: इस सेटअप को हम 4 से 5 घंटा छोड़ देते हैं रोशनी में, ताकि नूरी तरकीब का अमल भी हो और पौधे में ट्रांसपरेशन का अमल भी हो
1: जी,
0: नूरी तरकीब का अमल भी हो और दूसरे तमाम प्रोसेस भी उसमें जारी रहे। 5 से 6 घंटा के बाद जब हम मुताला करेंगे तो हमें एक फर्क दिखेगा
1: जी।
0: वो फर्क ये दिखेगा कि दोनों ग्लास का जो पानी का लेवल है, पानी की सतह
1: जी,
0: उसमें कमी आ जाती है
1: दोनों ही में।
0: दोनों में तब आपके ध्यान में ये सवाल आ सकता है कि उस पानी की सतह में आखिर कमी कैसे हुई या वो ग्लास का पानी कहाँ गया
1: जी।
0: तो उसका जवाब ये है कि पौधे के जड़ ने उस पानी को जस्प किया और जस्प करके अपने पत्तियों में भेजा और उसी पानी का इस्तेमाल करके पत्तियों ने नूरी तरकीब के अमल के जरिए अपनी गजा तैयार की और जो फाजिल पानी था उसे पत्तियों ने ट्रांसपरेशन के अमल के जरिए बाहर खारिज कर दिया। ये सारे प्रोसेस इसमें हो रहे हैं और उसके लिए वो पानी की जरूरत पड़ी, वो पानी जज्ब हुआ जड़ के जरिया और कैपिलरी एक्शन के जरिया ये ऊपर के जानिब पत्तियों तक पहुंचा और वहां पे अपना काम अंजाम दिया। तो ये जो पानी ग्लास का जज्ब हुआ
1: जी,
0: तो जाहिर है पानी के लेवल में सतह में कमी आएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: बिल्कुल।
0: दोनों में कमी आई
1: जी,
0: दोनों में ही कमी आई
1: जी, जी।
0: यानी कि ट्रांसपरेशन का अमल या फिर ट्रांसपोर्ट का अमल, सैप के ट्रांसपोर्ट का अमल दोनों ही पौधे में हो रहा है,
1: हो रहा है यकसा तौर पर।
0: यकसा तौर पर
1: जी जी।
0: अब हम ये कैसे समझेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट का अमल पौधों में हुआ
1: जी,
0: ये ट्रांसपोर्ट का अमल पौधे के तने के अंदर मौजूद जाइलम बाफ्त ने ही किया, जाइलम बाफ्त का ही किरदार है, ये हम कैसे समझेंगे?
1: बहुत खूब जी।
0: इसे समझने के लिए अब और एक काम करना होगा जो आपने पहले वो सवाल किया था कि बाहर से देख के कुछ जाहिर नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए दोनों पौधे के तने को ट्रांसवर्स सेक्शन काटना है।
1: बिल्कुल।
0: काटने के बाद स्लाइड पर लेकर माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने पर हम ये देखेंगे कि एक तने के बाफ्त के अंदर जो जाइलम टिश्यू है वो रेड कलर का है और एक पौधे के बाफ्त के अंदर जो जाइलम टिश्यू है वो व्हाइट कलर का है
1: जी, जी।
0: तो ये रेड कलर जाइलम टिश्यू का हो जाना
1: जी,
0: ये साबित करता है कि ये ट्रांसपोर्ट जाइलम टिश्यू के जरिया ही हो रहा था, जिसके जरिया सैप यानी जड़ से जज्ब शुदा पानी और मिनरल्स वो रूट से पत्तियों तक पहुंची है। तो रूट से पत्तियों के बीच में क्या है एक पौधे में? जाहिर है तना है।
1: तना है, बिल्कुल बिल्कुल।
0: और वो तना के अंदर क्या है? जाहिर है जाइलम बाफ्त है। उसी जाइलम बाफ्त ने तना के अंदर में इस काम को अंजाम दिया। वो काम क्या है? ये काम है सैप का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम रूट टू लीफ। तो इसी मुशाहदे को हम ये देखना चाह रहे थे, इस लाल कलर को, जाइलम का सुर्ख हो जाना, जाइलम बाफ्त का, जाइलम टिश्यू का रेड कलर हो जाना, ये साबित करता है कि ट्रांसपोर्ट का ये अमल पौधों में जाइलम टिश्यू के जरिया ही अंजाम पाया है।
1: सर, एक जुमले में अगर कहना चाहें आप कि इस पूरे मुताले का माखज क्या निकला, तो क्या कहेंगे?
0: इस पूरे मताले का माखज ये है कि पौधे में जो सैप का ट्रांसपोर्ट होता है यानी पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है
1: जी,
0: वो जाइलम बाफ्त के जरिया ही होता है और इसे ही हम इस एक्सपेरिमेंट में दिखाना चाह रहे थे
1: जी, जी। और अब चंद एक बात पूछना यहाँ लाजमी हो गया
0: बेशक
1: कि सैप की मुंतकली के इस अमल के जरिया पौधों में और किन किन अमल में फायदा पहुंचता है?
0: जी हाँ, एक्चुअली जब ये जाइलम टिश्यू सैप को रूट से पत्तियों के जानिब मुंतकिल कर रहे हैं
1: जी,
0: तो ये पत्तियों तक जाने के बाद नूरी तरकीब के अमल में हिस्सा ले रही है
1: जी
0: और पौधे में गजा तैयार कर रही है। तो इसका मतलब ये नूरी तरकीब के अमल में अहम किरदार अदा करती है
1: जी। बिल्कुल।
0: दूसरी बात यह है कि जितनी सैप ऊपर पहुंची पत्तियों तक, उसमें से कुछ परसेंटेज ने नूरी तरकीब में हिस्सा लिया, बाकी जो वाटर है या फिर कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल वाटर के साथ है उसको बोलते हैं एक्सेसिव मिनरल, जो पौधों में रहना ठीक नहीं है
1: जी।
0: तो उसे पौधे अपने जिस्म से खारिज कर देता है, निकाल देता है
1: जी।
0: तो वो जो निकलने का अमल है वो पत्तियों के स्टोमेटा के जरिया फिर से खारिज हो जाता है।
1: सर, इसको हम इवापोरेट का अमल कह सकते हैं?
0: इवापोरेशन, ट्रांसपरेशन का अमल जो पत्तियों के स्टोमेटा से हो रहा है।

आप सुन रहे थे एशकिंग और शाशाते। आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में वाह वाह राम जी का नगमा। और अब चलिए आपकी समातों की नज़र एशकिंग और शाशा तिरुपति की आवाज़ में फिल्म हाफ गर्ल फिल्म का नगमा, शायरी रफत महमूद और तनिष्क बागची की, और जिसे मौसीकी से सजाया तनिष्क बागची ने।

करते रहिए, नगमा अब आपका साथ निभाएंगी सिसिलिया बैनर्जी। और आप अपनी मेज़बान सूफिया शीरी को इजाज़त दीजिए इस वादा के साथ कि फिर हम आएंगे आपसे मिलने। आवाज़ का रिश्ता बना रहेगा, दिल से दिल का रिश्ता बना रहेगा और

को मजबूत बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ आपके फोन कॉल, कुछ आपके खतूत, कुछ आपके मेल्स, जिसमें आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं सुनना। हम वही सुनाएंगे जो आप सुनना चाहेंगे, ये हमारा वादा है।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। सीढ़ी की घड़ी में समय हो गया है 12:47 का और इसी के साथ मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी कार्यक्रम सुरभि। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा है से। आज अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ केयर डे है। सुनने में ये शब्द शायद थोड़ा आधुनिक लगे लेकिन इसकी भावना हमारी भारतीय जीवन शैलियों में सदियों से चली आ रही है। आखिर कहा भी गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। सेल्फ केयर का अर्थ केवल महंगे स्पा छुट्टियां या आराम करना नहीं, इसका मतलब है अपने शरीर मन और भावनाओं का ध्यान रखना। दिन भर की भाग दौड़ में हम अक्सर सबकी चिंता करते हैं लेकिन खुद के लिए कुछ पल निकालना भूल जाते हैं। जरा सोचिए अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो हम तुरंत उसे चार्ज करते हैं लेकिन जब हमारा मन थक जाता है शरीर जवाब देने लगता है तब हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही आदत धीरे धीरे तनाव थकान और कई बार स्वास्थ्य समस्याओं का वजह भी बन सकता है। सेल्फ केयर की शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, पूरी नींद लेना, कुछ देर टहलना, योग या व्यायाम करना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और सबसे जरूरी बात अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना। याद रखिए स्वयं का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तभी अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल की जिम्मेदारियां भी बेहतर ढंग से निभाते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ केयर डे पर आइए खुद को एक छोटा सा वादा करें, हर दिन अपने लिए कुछ मिनट जरूर निकालेंगे क्योंकि जब हम अपना ख्याल रखते हैं तभी हम दूसरों का भी बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो ये थी चर्चा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो चलिए कार्यक्रम सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, और आगे बढ़ते हैं और पहल की ओर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं नया सवेरा। हर नया सवेरा अपनी नई उम्मीदों के साथ नए सपने और कुछ नया दिखाने के लिए विश्वास लेकर आता है, और आज का विषय है नया सवेरा फ्री कोचिंग योजना। कितने ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास मेहनत करने का जज्बा तो होता है, लेकिन महंगी कोचिंग की फीस उनके रास्ते में दीवार बन जाती है। ऐसे ही युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा फ्री कोचिंग योजना संचालित की जा रही है। शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने का माध्यम भी है। आज प्रतियोगी परीक्षाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सिविल सेवा हो, बैंकिंग हो, रेलवे, HHC या इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं, हर क्षेत्र में बेहतर मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अच्छी कोचिंग प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं होता। यही कारण है कि ऐसी योजनाएं उन युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आती है। फ्री कोचिंग योजना का उद्देश्य केवल निःशुल्क पढ़ाई कराना नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है जो प्रतिभाशाली हैं पर आर्थिक कारणों से पीछे रह जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी को अनुभवी शिक्षकों से पढ़ने का अवसर मिलता है, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां व्यवस्थित ढंग से कराई जाती है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अवसर की समानता को बढ़ावा देता है। किसी विद्यार्थी की प्रतिभा केवल इसलिए पीछे नहीं रह जाती कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, यही इस योजना की मूल भावना है। जब समाज के हर वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है, तभी वास्तविक अर्थों में समावेशी विकास संभव हो पाता है। लेकिन केवल योजना का होना ही पर्याप्त नहीं, उसका लाभ तभी मिलता है जब सही जानकारी समय पर मिले। कई बार छात्र योग्य होने के बावजूद आवेदन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें योजना की जानकारी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि विद्यार्थी नियमित रूप से संबंधित विभागों की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखे, आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार रखे और आवेदन की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखे। याद रखिए, सफलता केवल सुविधा से नहीं मिलती बल्कि मेहनत, अनुशासन और सही दिशा से मिलती है। यदि अवसर आपके दरवाजे तक आया तो उसे पहचानना और उसका पूरा लाभ उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। फ्री कोचिंग योजना उसी अवसर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अनेक युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अब तक हमने जाना कि

कोचिंग योजना क्यों शुरू की गई और ये किस तरह आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। आइए अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किन लोगों तक पहुंचता है और इसका प्रभाव केवल एक विद्यार्थी तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज को नई दिशा देता है। अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी केवल किताबें पढ़ लेने से पूरी नहीं होती। सही मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास, मॉक टेस्ट, समय प्रबंधन और अनुभवी शिक्षकों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक होता है। फ्री कोचिंग योजना इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। इससे छात्र न केवल विषय को अच्छी तरह समझते हैं बल्कि परीक्षा के दबाव को संभालना और आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पत्र हल करना भी सीखते हैं। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र विद्यार्थियों को दिया जाता है। अलग अलग योजनाओं और राज्यों के अनुसार पात्रता की शर्तें अलग हो सकती हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय भी की जाती है। आज डिजिटल तकनीक ने शिक्षा को नई दिशा दी है। कई स्थानों पर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी गुणवत्ता मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों का सही उपयोग करके विद्यार्थी अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन केवल कोचिंग में प्रवेश मिल जाना ही सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता तब मिलती है जब विद्यार्थी नियमित अध्ययन करे, समय का सदुपयोग करे, हर दिन अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे और कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखते रहे। याद रखिए, शिक्षक रास्ता दिखाते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने का सफर स्वयं विद्यार्थी को ही तय करना पड़ता है। अभिभावकों की भूमिका भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि परिवार का सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है तो विद्यार्थी मानसिक रूप से अधिक मजबूत महसूस करते हैं। कई बार एक उत्साहवर्धक शब्द भी निराशा के क्षणों में नई ऊर्जा भर देता है। इसलिए परिवार की समाज दोनों की जिम्मेदारियां हैं कि वे शिक्षा के सबसे बड़ा निवेश माने और युवाओं को सपनों को उड़ान देने में उनका साथ दे। आज देश के अनेक युवा अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, कोई बैंक अधिकारी बनना चाहता है, कोई शिक्षक, इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना देखता है। इन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन सही मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास और दृढ़ संकल्प इस यात्रा को निश्चित रूप से आसान बना देते हैं। यही कारण है कि ऐसी योजनाओं का महत्व केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं बल्कि वे युवाओं में आत्मविश्वास भी जगाती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन की भी परीक्षा होती है। कभी कभी पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मंजिल दूर हो गई। हर प्रयास में हमें कुछ नया सिखाता है, हमारी कमियों को पहचानने का अवसर देता है और अगले प्रयास के लिए बेहतर तैयार करता है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले संबंधित मंत्रालय, विभाग या राज्य के आधिकारिक वेबसाइट और सूचना माध्यमों से जानकारी प्राप्त करें। आवेदन की तिथि, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और चयन प्रक्रिया को ध्यान से समझें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था के बहकावे में न आए और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही आवेदन करें। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने की शक्ति भी है। एक शिक्षित युवा अपने परिवार का जीवन बदल सकता है और वही युवा आगे चलकर देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए शिक्षा पर किया गया हर प्रयास भविष्य में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव बनता है। दोस्तों, यदि आपके परिवार, पड़ोस या परिचितों में कोई ऐसा छात्र या छात्रा है जो प्रतिभाशाली है लेकिन आर्थिक कारणों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहा है तो उसे फ्री कोचिंग जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी अवश्य दे। आपकी एक छोटी सी पहल किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। और इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ आज के कार्यक्रम पहल में बस इतना ही। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस भी हमारे भीतर होता है। अवसर का इंतजार मत कीजिए, अवसर को पहचानिए और उसका सही उपयोग कीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तो ये थी सुरभि और सुरभि में आज हमने बात की नया सवेरा यानी कि फ्री कोचिंग सेंटर के बारे में।

और इसी के साथ आज सुरभि कार्यक्रम में आज सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत पहल बस यही तक। चलिए आगे बढ़ते हुए सुन लेते हैं कुछ हिंदी फिल्मी नगमे और साथ हमारा रह गया है सिर्फ 5 मिनट का, तो चलिए बात आपको यही बता दूं कि आगे बने रहिए हमारे साथ। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संजयदा। थोड़ी ही देर में सुनेंगे अगला कार्यक्रम, पर उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by

0: को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया।

0: उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कारगिल विजय दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
1: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी।

0: समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন 3 তালে তবলা, শিল্পী তাপস পাল। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন হিরণময় মিত্র।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হচ্ছে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। মিডিয়া ময়েব 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে অনুষ্ঠান শুনছেন ডিটিএইচ বাংলা পরিষেবা এবং নিউজ অন এআইআর অ্যাপে। এখন সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। ये परियोजना प्रधानमंत्री शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के एक साथ और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन

0: एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said during the meeting they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
3: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
2: Meanwhile, spokesperson of CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands.
4: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed this today while talking to the reporters at the Parliament premises. Mr. Rijiju said the government is taking important steps to safeguard the future of the students. He added that if the opposition creates hurdles in parliamentary discussions on the issue, it will have to face the anger of the country's youth. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth line of Bellary Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometres. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. The project is planned on PM Gati Shakti National Master Plan with a focus on enhancing multimodal connectivity and logistic efficiency. It will provide seamless connectivity for movement of people, goods,

0: पल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन

0: सीखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया, और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूं कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
1: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा
0: जी।
1: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
0: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास, और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गाँव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहाँ जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे, और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
1: अच्छा
0: जी। फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहाँ मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट। तो वहाँ पे मैं सेकंड आई थी, गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
1: गवर्नमेंट होती है ना
0: जी, डिसिप्लिन्ड। एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
1: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
0: 13 साल की थी।
1: अच्छा जी। तो 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
0: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। अच्छा। इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूं और घर वापस चली जाऊं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी, उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है बोल। तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे दो गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में दो ही किट आती है, या तो आपको एक साल।
1: आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना
0: जी? मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया।
1: आपने काफी गोल बचाए
0: जी। तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है। तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे।
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की जब उसके बाद आप साई एकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सभ्यता का क्या जज्बा होता है मन में?

0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया है। तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया। आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है। और काफी खुशी थी उनके आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा। अच्छा? मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई। एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे, सविता वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। 1980 में बुलाया था बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है। तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली, तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की और कोचेस से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था, और लास्ट क्वार्टर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं

0: लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद
1: हम साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती
0: हैं, दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था, तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई, और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है, और लास्ट क्वार्टर में उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, और मेरे साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: आपके जैसे खिलाड़ी है जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी है अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गाँव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है, और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस, कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप कि प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी आप?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी, और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे, मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था, और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे 2 सवारी और बैठ जाएंगे, मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ, तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है छोड़ के जा रही है, तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी, और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं, 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ, मैंने कहा नहीं, तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो, मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो, तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी, और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ, तो पापा ने बोला कि बेटा आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना, और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी, और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी, तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए, तो ये टाइम थे जहाँ पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
0: जी
1: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की कि लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।

0: बोलते थे मम्मा क्या बताते थे?
1: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहाँ। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
0: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हो। आई एम श्योर बहुत ही ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही है। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
1: पब्लिक स्पीकिंग।
0: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
1: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
0: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
1: डॉक्टर।
0: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती थी?
1: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
0: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
1: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
0: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
1: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
0: अच्छा
1: जी,
0: खाने को ना करना आसान है?
1: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
0: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
1: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
0: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
1: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
0: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर के हटकर तो क्या होगी?
1: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
0: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में, और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें, और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पे उतरेंगी, जो आप गोल बचाती आई हैं, वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है, वही आगे भी लगातार जारी रहे। हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम DD News के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:30:55। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। और इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि आप सभी का प्रिय कार्यक्रम यानी कि उर्वशी हो चुका है शुरू। और उर्वशी के अंतर्गत आप सभी के लिए आज यानी कि शुक्रवार की शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं सुरुचि। तो आज सुरुचि के अंतर्गत किस विषय पर होंगी बातें और कौन सा व्यंजन या कौन सी खास रेसिपी आपके साथ होगी शेयर, इसे जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, लेकर इस कार्यक्रम को जिसका नाम है उर्वशी और आज का खास सेगमेंट यानी कि सुरुचि।

वेल फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे दावते इश्क फिल्म से ये टाइटल ट्रैक। और आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में समय 5:37:35। दोस्तों, उर्वशी में आज सुरुचि के अंतर्गत हम बातें करने जा रहे हैं एक ऐसे पारंपरिक मिठाई की जो कि स्वाद, स्वास्थ्य और संस्कृति तीनों में एकदम टॉप क्लास है और साथ ही इन तीनों का एक अद्भुत संगम भी है। मैं बात कर रही हूँ झंगोरा की खीर के विषय में। दोस्तों, झंगोरे की खीर के विषय में बात करने से पहले आपको ये बता दूं कि जब भी उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों का नाम लिया जाता है तो ये जो खीर है इसका जिक्र सबसे पहले आता है, क्योंकि ये खीर केवल एक मिठाई नहीं बल्कि पहाड़ों की जीवन शैली, प्रकृति और स्थानीय संस्कृति का प्रतीक भी।

मानी जाती है। तो दोस्तों आपको बताते हैं सबसे पहले कि ये झंगोरा आखिर है क्या। तो झंगोरा एक मोटा अनाज है जिसे मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे बर्नयार्ड मिलेट भी कहा जाता है। ये हिमालयी क्षेत्रों में खास तौर पर मिलता है और विशेष रूप से उत्तराखंड में सदियों से उगाया जाता है इसे, और कम पानी की आवश्यकता होती है ताकि आसानी से ये ग्रो कर सके, उपज सके। और आपको बता दें कि ये कठिन जलवायु में भी आसानी से तैयार हो जाता है। दोस्तों आज जब पूरी दुनिया मोटे अनाजों और अन्य चीज़ों की बात कर रही है, हेल्दी फूड की बात कर रही है, तो ऐसे में झंगोरा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने के साथ साथ अपनी खास जगह बनाए हुए है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में किसी भी शुभ अवसर जैसे कि शादी या फिर पूजा या फिर त्यौहार या फिर कोई भी पारिवारिक समारोह हो, ऐसे में झंगोरे की खीर विशेष रूप से बनाई जाती है। इस खीर का स्वाद साधारण चावल की खीर से थोड़ा सा अलग होता है। इसका हल्का दानेदारपन जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही दूध की मिठास और इलायची की सुगंध इसे बहुत ही खास बना देती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने घर में झंगोरे की खीर बनाएं, तो इसके लिए रेसिपी जो है वो ज़रूर आपको बताऊंगी। सबसे पहले सामग्रियां क्या क्या लगती हैं उनके बारे में अगर बात की जाए, तो झंगोरा आपको लेना होगा 1 कप, और साथ ही 1 लीटर आपको लेना होगा फुल क्रीम मिल्क यानी कि फुल क्रीम दूध जो मिलता है, और साथ ही चीनी या फिर गुड़ अपने स्वाद के अनुसार, और इलायची पाउडर आपको लेनी होगी। साथ ही बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और केसर जो कि एक ऑप्शनल चीज है, ये भी आप रख सकते हैं। दोस्तों बनाने की विधि के बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले तो झंगोरे को अच्छी तरह से धोकर लगभग 20 से 30 मिनट तक भिगो कर रखना होता है। इसके बाद इसे एक भारी तले वाले बर्तन में आपको एक दूध लेना है और दूध लेकर उसे उबालना है। जब दूध उबलने लगे तो भीगा हुआ जो झंगोरा आपने रखा था 20 से 30 मिनट तक, उसे इसमें डाल देना है। धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए इसे पकाना है ताकि दूध जो है वो नीचे न लग जाए। दोस्तों दूध नीचे ना लगे इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि झंगोरा जो है वो अच्छी तरह से गल भी जाए। जब ये मिश्रण गाढ़ा होने लगता है तब उसमें आपको चीनी या फिर गुड़ मिलाना पड़ता है, और फिर इलायची पाउडर, कटे हुए मेवे, और कुछ मिनट तक पकाने के बाद गैस आपको बंद कर देनी होती है, और आपका स्वादिष्ट झंगोरे का खीर एकदम तैयार हो गया। तो दोस्तों ये तो रेसिपी थी, लेकिन इसके बारे में और भी कुछ बातें जरूर शेयर करना चाहूंगी, लेकिन अभी आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना।

0: वेल फ्रेंड्स, झंगोरे के खीर के विषय में हो रही थी आज बातें और खूबसूरत रानी थे हमारे साथ ही। आपको बता दें कि झंगोरा केवल एक स्वादिष्ट पदार्थ ही नहीं, साथ ही पौष्टिक पदार्थ भी है और ये जो है आपको भरपूर मात्रा में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और अनेक खनिज जो है आपके शरीर तक पहुंचाता है और ये ग्लूटेन फ्री है, इसलिए कई लोग इसे काफ़ी अच्छा ऑप्शन मानते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। और साथ ही झंगोरे का जो खीर होता है ये बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के लिए लाभकारी होता है। तो दोस्तों, ये खीर जो है उत्तराखंड की महक लिए हुए है, तो इसे जरूर आप ट्राई करें क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करने से क्या होता है ना कि हमें अलग अलग क्षेत्रों के भोजन के विषय में तो पता चलता ही है, साथ ही हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में फिल्म हमराज से।
1: तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यान पूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल

0: की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकाल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced regarding bringing a bill with provisions for strong action in cases of paper leaks will be introduced in the Parliament. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
3: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
2: Spokesperson of the CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands.
4: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
2: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Talking to reporters at the Parliament premises, Mr. Rijiju said the country also wants the same and there should be no obstruction to the passage of the bill. Mr. Rijiju said the government is taking important steps to safeguard the future of students. He added that if the opposition creates hurdles in parliamentary discussions on the issue, it will have to face the anger of the country's youth. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth rail line of Bellari Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of the Indian Railways by about 46 kilometers. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. He also informed about the Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:10:40। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों, आज खास जो कार्यक्रम हम वार्ता लेकर आते हैं, उस वार्ता के अंतर्गत आज जो खास विषय है उसके बारे में बताने से पहले आपको ये बता दें कि किसी भी राज्य या राष्ट्र की डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आयकर का योगदान। तो ऐसे में इस आयकर को हमें विशेष रूप से इसके विषय में जानना भी चाहिए और जानकारी रखने के साथ साथ अपना योगदान पूरी ईमानदारी के साथ देना भी चाहिए। ये हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए भले ही कोई एक विशेष व्यक्ति हो, लेकिन हम सभी का योगदान एक विशेष स्थान रखता है। ऐसे में आज दोस्तों हम वार्ता के अंतर्गत जिस विषय पर बातें करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें, वार्ता के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे आयकर दिवस और जिम्मेदार नागरिक के विषय में। दोस्तों, आज है 24 जुलाई और आज के दिन यानी हर वर्ष 24 जुलाई के दिन भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र के विकास में करदाताओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार भारत में आयकर लागू हुआ। स्वतंत्र भारत में समय के साथ आयकर व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सरल तथा डिजिटल बनाया गया। हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में अच्छी सड़कें हों, आधुनिक अस्पताल हों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, साथ ही साथ सेना मजबूत हो, किसानों को सहायता भी मिले, गरीबों का कल्याण हो और देश तेजी से आगे बढ़े। लेकिन इन सभी के लिए हमें ये भी सोचना होगा कि हमें अपना योगदान भी देना है, क्योंकि कभी अगर आप सोचें तो इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता

आवश्यकता होती है और इस धन को हम अपने देश को अपने आयकर के माध्यम से प्रदान करते हैं। दोस्तों आपको बताएं कि कर यानी कि एक ऐसी चीज जो हमारा योगदान बनता है देश की सफलता में। इसका सबसे बड़ा यानी आयकर जो होता है वो सबसे बड़ा स्रोत होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में। जब कोई नागरिक अपनी आय के अनुसार ईमानदारी से कर चुकाता है तो वो धन देश के विकास कार्यों में लगाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर देना केवल कानूनी दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है। जैसे हम मतदान करते हैं, कानून का पालन करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से समय पर आयकर का भुगतान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की होती है। आज भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है। अब आयकर रिटर्न भरना पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल भुगतान और ई वेरिफिकेशन जैसे सुविधाओं ने पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया है। कई लोग सोचते हैं कि टैक्स देने से उनका पैसा कम हो जाता है, लेकिन वास्तव में टैक्स का पैसा समाज के विकास में निवेश होता है। यही पैसा नई सड़कें, पुल, रेलवे, मेट्रो, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, बिजली, जल योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आवश्यक सेवाओं पर खर्च किया जाता है। यदि हम पात्र जो व्यक्ति नागरिक ईमानदारी से अगर अपने कर को दे तो आर्थिक रूप से देश जो है वो मजबूत बन सकता है। और अगर हम इसमें गलती करेंगे या फिर कहीं अगर हमने अपनी ईमानदारी को छोड़ा तो देश के डेवलपमेंट में हम कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न जरूर करेंगे। दोस्तों हमें ये भी समझना चाहिए कि कर चोरी केवल कानून का उल्लंघन नहीं होता है बल्कि समाज और राष्ट्र के साथ अन्याय भी होता है। जब कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता है तो उसका विकास और उपलब्ध संसाधन कम हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए और अपना टैक्स सही रूप से प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सही रूप से टैक्स देंगे तभी हमारे देश का डेवलपमेंट, उसका विकास प्रॉपर यानी सही तरीके से होगा। आज सरकार भी करदाताओं को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। फेसलेस असेसमेंट, ऑनलाइन रिफंड, डिजिटल सेवाएं और सरल कर प्रणाली जैसे अनेक पहले करदाताओं को विश्वास जो है दिला रही है कि उनका जो योगदान है वो व्यर्थ नहीं है बल्कि हमारे देश के डेवलपमेंट में, उसकी तरक्की में एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में माना जा रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपना आयकर सही विवरण देना चाहिए। सही विवरण के साथ साथ हमें समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए, कर संबंधी नियमों का पालन भी करना चाहिए और दूसरों को भी कर भुगतान के प्रति जागरूक करना चाहिए। ईमानदारी और पारदर्शिता को अपने जीवन का हिस्सा भी बनाना चाहिए। भारत आज विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं है, इसमें हर नागरिक की अपनी भागीदारी होती है और साथ ही साथ कर देने से हमारे देश का ही विकास होता है। जिस प्रकार से हम अपने घर को बेहतर बनाने के लिए अपना धन खर्च करते हैं, ठीक उसी प्रकार से टैक्स जो होता है वो हमारे देश को बेहतर बनाने का एक उपाय है। तो ऐसे में कर देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ हम सभी के लिए कानूनन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कर की चोरी एक अपराध

0: है। साथ ही हम ये अपराध सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं बल्कि अपने देश से एक तरह से हम उसके लिए डेवलपमेंट में बाधा के रूप में सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश के डेवलपमेंट में हम किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। कर देकर यानी आयकर देकर हम अपनी जिम्मेदारी जो है उसे निभा सकते हैं। हमारा देश और ज़्यादा डेवलप होगा तभी हमारी फ्यूचर जनरेशन, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, ये पीढ़ियाँ और भी ज़्यादा विकसित होंगी और उनको हम एक बेहतर समाज दे सकेंगे। तो एक बेहतर समाज देने के लिए, एक बेहतर देश के लिए हमारा आयकर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज यानी 24 जुलाई के दिन जब हम पूरे देश में आयकर दिवस मना रहे हैं, ऐसे में हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने देश के विकास में अपना ये वाला योगदान यानी अपने आय से कर की कटौती अवश्य करेंगे, क्योंकि इससे हमारा देश और हमारा भविष्य दोनों ही बेहतर और उज्जवल होगा। दोस्तों आज की वार्ता में बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय 6:19:35। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, और इस चैनल और कार्यक्रम को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सभी के लिए कुछ ही देर में प्रस्तुत किया जाएगा संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय कठोर दण्डस्य विधानाय च एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बलारी गुंतकल रेल परियोजनायै अनुमोदितं 64.12 लाख कोटि परिमितं द्रव्यम्। अपरत्र अंगीकृता त्रि रसायनोद्यान संवलिता भव्य रसायन परियोजना। केन्द्रीय मंत्रीभिः सीजेपी प्रतिनिधिमंडलेन सह नवदिल्ल्यां संपादितम् उपवेशनम्। श्वस्तावत् पुनः प्रवर्तयिष्यते द्विपक्षीय वार्ताक्रमः। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणं समाश्रित्य संसदि अद्यापि अनुवृत्तः कोलाहलः। प्रतिपक्षस्य विरोधोद्घोषेण सोमवासर पर्यन्तम् अपवारितं संसदः कार्यजातम्। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य अथ मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्रसंघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन प्रकटीकृतः तीव्रः खेदः। अपि च विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय सहैव कठोर दण्डस्य विधानाय एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अस्य प्रारूप विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल आर्थिक कार्य समित्या कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्ययोः मध्ये स्थितस्य बल्लारी गुंतकल रेल खंडस्य रेल पथ पंक्तेः निर्माण प्रस्तावाय स्वीकृतिः प्रख्यापिता। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अब्रवीत् यत् एषा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्ययोः मध्ये गमनागमन संपर्कं भृशं दृढयिष्यते। एषा कार्ययोजना तावत् प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रिय महायोजनायाः आधारेण परिकल्पिता वर्तते। यस्याः मुख्यं लक्ष्यं तावत् एकीकृतनियोजनेन तथा हितधारकाणां परामर्श

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:35 और 16 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और फिलहाल अभी आप सुन रहे थे तुम आए हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज में। और ये जो गीत था, इसके साथ आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका कार्यक्रम गुलगुलशन में, जहाँ आप सुनते हैं कुछ खूबसूरत मिश्रित गीत संगीत के साथ हमारी ढेर सारी बातें।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सुल्तान खान के साथ श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत। और आपको बता दें इस गीत के ठीक पहले आप सुन रहे थे अलीशा चिन्नॉय की आवाज़ में एक गीत। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलगुलशन, जिसमें मिश्रित गीत संगीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। फिलहाल आप सभी के लिए अगला गीत यूफोरिया के पलाश सेन की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय हो चला है 6:54 और 38 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। और दोस्तों, उस्ताद सुल्तान खान के साथ चित्रा की आवाज में अभी अभी आपने सुना पिया बसंती रे, बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन तराना। लेकिन इस तराने को सुनते सुनते हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पर गुल गुलशन में अंतिम गीत पेश करने का समय हो चला है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला और अंतिम तराना। आइए सुनते हैं लकी अली की आवाज में खूबसूरत जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता ये गीत। आइए सुनते हैं इस गीत को आप सभी के लिए, ये गीत कार्यक्रम गुल गुलशन के अंतर्गत। आइए सुनते हैं

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल रेल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:30:57। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी इस ओर इशारा कर रही है कि समय हो चुका है दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण का। दोस्तों, दर्पण के अंतर्गत सबसे पहले आप सभी के लिए हमेशा की तरह प्रस्तुत करते हैं एक नजर। दोस्तों, खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, इस बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आज एक नज़र में हम जिस खास दिवस के रूप में बात कर रहे हैं, जिस खास दिवस के विषय में बात करने जा रहे हैं, इस दिवस के बारे में आपको बता दूं, आज है 24 जुलाई और आज है अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ केयर डे यानी कि इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे। और दोस्तों, इस दिवस को मनाने के पीछे का जो खास उद्देश्य है वो उद्देश्य है लोगों को अपने शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि यदि हम खुद का ध्यान रखेंगे, स्वयं का ध्यान रखेंगे, तभी अपने परिवार, समाज और देश को बेहतर सेवा दे पाएंगे। सेल्फ केयर क्या होता है इसके विषय में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक अगर शॉर्ट में इसे बताया जाए तो सेल्फ केयर का अर्थ होता है सिर्फ आराम करना या छुट्टी मनाना नहीं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ होता है अपने शरीर, मन और भावना को नियमित रूप से उसकी देखभाल करना, संतुलित करना, संतुलित भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित रूप से व्यायाम करना, मानसिक तनाव को कम करना, समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना और साथ ही सकारात्मक सोच बनाए रखना, ये सब कुछ शामिल है सेल्फ केयर यानी कि अपनी देखभाल करने में। आज की तेज तरार जो जिंदगी है, इस जिंदगी के बीच हमें कई सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, हम सभी ऑलमोस्ट वर्किंग है और ऐसे में अपने स्वास्थ्य को अनदेखा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होता है तनाव, थकान, चिंता और कई तरह की जो शारीरिक बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें ध्यान अपना खुद का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए कुछ सरल आदतें अगर हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में डालेंगे तो फिर हमारा जीवन और हमारा शरीर और साथ ही हमारी जो ये लाइफस्टाइल है ये और भी ज्यादा संतुलित और सुंदर हो सकती है। दोस्तों, कम से कम हर रोज 30 मिनट का समय हमें निकालना चाहिए व्यायाम या फिर योग करने के लिए। पौष्टिक और संतुलित भोजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी से ज्यादा जरूरी क्या है? इन सबसे ज्यादा जरूरी है 7 से

हम अपने मन को और भी ज्यादा स्ट्रांग यानी कि फीलिंग्स भावनाओं के मामले में अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो जरूरी है अपने शरीर का ध्यान रखना और उसके साथ साथ ध्यान रखना है अपने मन और अपनी भावनाओं का भी। फिलहाल आप सभी को बता दें कि सेल्फ केयर डे के इस दिन पर आप सभी के लिए पेश है इन बातों के साथ साथ एक खूबसूरत तराना सुल्ताना के साथ ज्योति नूरन की आवाज में फिल्म हाईवे से। आइए सुनते हैं ये गीत।

वेलफ्रेंड स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:39 आप सभी को बता दें कि कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत अब प्रस्तुत है आप सभी के लिए हमारा अगला सेगमेंट। आज है शुक्रवार की शाम और इस शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं विधि विधान और समाधान। और दोस्तों आपको बता दें आज इस कार्यक्रम के सेगमेंट के अंतर्गत हम बातें करने वाले हैं पॉस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अधिनियम 2012 पॉस्को अधिनियम 2012 के विषय में आज के कार्यक्रम विधि विधान और समाधान में होंगी बातें। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बच्चे जो हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं और न सिर्फ देश का भविष्य हमारे परिवार का भविष्य भी वही है, तो ऐसे में उनका ख्याल रखना उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें एडुकेट करना। और किसी भी इस तरह की परिस्थिति में अगर वो दुर्भाग्यवश फंस जाएं तो ऐसे में खुद को कैसे वो सुरक्षित रखने की चेष्टा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बचपन से ही छोटे बच्चों को ही सिखाना शुरू करना चाहिए। लेकिन हमारे कानून के में या फिर ये कह सकते हैं हमारे अधिनियमों में ये अधिनियम यानी पॉस्को अधिनियम 2012 जो है एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ही उम्र में कम होते हैं और उन पर अगर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो तो फिर ऐसे बच्चों को हम लोग सहायता भी करते हैं और उसके लिए विशेष जो नियम है उनके बारे में आज हम करेंगे चर्चा। दोस्तों आज विधि विधान और समाधान के अंतर्गत एक ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर हम बातें करने जा रहे हैं जिसका विषय है खास तौर पर छोटे बच्चे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉस्को अधिनियम 2012 जिसे हम बच्चों के लिए विशेष तौर पर जानते हैं, ये कानून केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि हर बच्चे के सम्मान सुरक्षा और गरिमा का संकल्प भी है। बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और ऐसे में उनका बचपन सुरक्षित खुशहाल और भयमुक्त हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दुर्भाग्यवश समाज में कई ऐसे अपराधी भी होते हैं जो बच्चों को कई तौर पर गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने वर्ष 2012 में पॉस्को एक्ट यानी कि पॉस्को अधिनियम बनाया। ये कानून बच्चों के लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साथ अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि पॉस्को अधिनियम आखिर है क्या। पॉस्को अधिनियम 2012 एक विशेष कानून है जो 18 वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लड़कों और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है, यानी कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध का शिकार होता है तो उसे इस कानून से संरक्षण प्राप्त करने की अधिकार भी मिलता है और उसे सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। इस अधिनियम की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है हमारे समाज में, क्योंकि जो बच्चे हैं उनसे जुड़े इस प्रकार के जो अपराध होते हैं वो अलग अलग कानून पहले इसमें नहीं हुआ करते थे, लेकिन ऐसे मामलों में कई कानूनी कठिनाइयां भी आती थी। ऐसे में पॉस्को अधिनियम के आने की वजह से बच्चों को काफ़ी हद तक राहत मिली। बढ़ते मामलों और बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए इस विशेष कानून को बनाया गया था। बच्चों को शीघ्र न्याय मिले, अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, पीड़ित बच्चों की पहचान और सम्मान की रक्षा की जाए, न्यायिक प्रक्रियाओं जो हैं उससे बच्चों के अनुकूल बनाया जाए, पॉस्को अधिनियम की ये सारी विशेषताएं थीं। दोस्तों बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा जो है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये कानून 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही आपको बता दें कि ये एक चाइल्ड

फ्रेंडली प्रक्रिया है। इस अधिनियम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि पुलिस, डॉक्टर और न्यायालय बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार करें। साथ ही बच्चों का बयान ऐसे वातावरण में लिया जाए जहां वे सहज महसूस कर सकें, अनावश्यक पूछताछ जो है उनसे बचा जाए और बच्चों की पहचान को गोपनीय रखा जाए। और साथ ही दोस्तों, अगर बात की जाए विशेष न्यायालय की, तो पॉस्को मामलों के लिए शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था भी की गई है ताकि बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। पहचान की गोपनीयता भी बहुत ज्यादा ध्यान इस पर रखा जाता है। पीड़ित बच्चों का नाम, फोटो या पहचान सार्वजनिक करना कानूनन प्रतिबंधित है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यदि किसी व्यक्ति को बच्चे के साथ इस प्रकार के अपराध की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना इससे संबंधित अधिकारियों को देना आवश्यक है। कानून इस प्रकार के सूचना देने वालों को प्रोत्साहित भी करता है। केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा में परिवार, विद्यालय और पड़ोसियों का भी, पूरा जो समाज है उसके आसपास का, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो दोस्तों, पॉस्को कानून जो है इसके विषय में जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को कहीं ना कहीं हमें एडुकेट भी करना ज़रूरी है। उन्हें गुड टच, बैड टच जैसी चीज़ें सिखाना और उनके आयु के अनुसार उनको बातें समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने की चेष्टा जरूर करते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में यदि वो मेंटली यानी कि मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, पूरी तरह से रेडी नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम विधि विधान और समाधान के अंतर्गत हम बातें कर रही हैं पॉस्को अधिनियम के विषय में। और इसके साथ ही दोस्तों, नियम तो कई सारे बनाए जाते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन करना और साथ ही साथ अधिनियम की अगर बात हो जाए तो कई सारी जो चीज़ें हैं, जब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं तो उसको लेकर हमारे जो अधिनियम बनते हैं वो अधिनियम हमें कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उनको हमें रेडी करना हर तरह की सिचुएशन से फाइट करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में अगर बात की जाए डिजिटल युग में सावधानी की, तो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया बच्चों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसके साथ ही कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। ये जो जोखिम हैं इनके विषय में अगर बात की जाए तो बच्चे जो हैं वो कई बार ऑनलाइन कई सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ युक्त हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारा भी जो कहीं ना कहीं एक हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखने की चेष्टा करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और पूरे समाज में अगर हम बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो बच्चों के लिए जो अधिनियम है उनके बारे में तो उन्हें समझाएं ही, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है उन्हें एडुकेट करना ताकि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की समस्या से बचे रहें। अगर किसी तरह की विषम परिस्थिति में वो फंस जाएं या किसी विषम परिस्थिति में पहुंच जाएं तो ऐसे में खुद की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉस्को अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे और उनकी जो उन्हें न्याय दिलाने के लिए कई सारे नियम ज़रूर बने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सावधानी से रखें और उन्हें एक तरह से एडुकेट बनाएं। दोस्तों, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम यानी दर्पण में इतना ही। आज आप सुन रहे थे कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत विधि

प्रावधान और समाधान के अंतर्गत पॉस्को एक्ट 2012 के विषय में। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय हो चला है 7:54:40, यानी कि समय का इशारा है। अब से कुछ ही देर में हमें आपसे विदा लेना है, तो आप सभी के लिए प्रस्तुत है आज के कार्यक्रम का अगला तराना। सुनते सुनते इस गीत को दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत।

0: है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय

0: के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों

0: महीने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई मनुजा कुमार।

0: नए टैरिफ लगाए। स्पेन ने मैड्रिड क्षेत्र में भीषण आग के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की संयम ने निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हड़ताल पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर आपत्ति व्यक्त की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति निराशा व्यक्त की है, क्योंकि पाकिस्तान विशेष रूप से कश्मीर के उस हिस्से में जहां पाकिस्तान का कब्जा है, दमनकारी गतिविधियों को नजरअंदाज कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने अधिकृत कश्मीर और पूरे देश में इस्लामाबाद द्वारा मानवाधिकारों के दमन और स्वतंत्रता के हनन का उल्लेख किया। सुरक्षा परिषद की बहस में भारत ने पाकिस्तान की कश्मीर संबंधी टिप्पणियों को खारिज किया। इस्लामाबाद द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री हरीश ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान में कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों, अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता के निरंतर दमन और मूलभूत स्वतंत्रता के हनन को देख रही है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उसके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।
1: आज लोकसभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात कर रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। इस संबंध में मंत्रालय ने 31 सहयोगी देशों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद 7 संसदीय प्रतिनिधि मंडलों ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए दुनिया भर के 33 देशों का दौरा किया। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: इस बीच भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
2: जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, सिंधु जल संधि की समझौते की बात है, इस पर हमारा पक्ष साफ है और हम लोगों ने समय समय पर आपको याद भी दिलाया है कि भारत का ये मानना है कि ये सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा।
0: श्री जायसवाल ने भारत द्वारा जानबूझकर पड़ोसी देश में बाढ़ लाने की पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए स्थान लगातार सिकुड़ता जा रहा है। आयोग की यह टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार मुनीजे जहांगीर के लंबे समय से चल रहे टेलीविजन कार्यक्रम स्पॉटलाइट के हाल ही में प्रसारण बंद किए जाने के बाद आई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। संसद अध्यक्ष हफीजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। नए राष्ट्रपति के चुनाव तक हफीजुद्दीन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति बने थे और अपने 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति से 2 वर्ष पहले ही त्यागपत्र सौंप दिया। अमेरिका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। लगभग सभी अमेरिकी आयातों पर लागू यह टैरिफ आज समाप्त हुए इसी तरह के शुल्क की जगह लेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर लगाए गए कई टैरिफ अवैध रूप से लागू किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-2028 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और लचीले समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्पेन सरकार ने आज राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। कई स्थानों पर लगी भीषण आग के कारण मध्य मैड्रिड क्षेत्र में लगभग 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मैड्रिड के क्षेत्रीय सरकार ने बताया कि भीषण गर्मी के दौरान जंगल की आग अनियंत्रित हो गई। इस वर्ष स्पेन में 1,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जल चुकी है। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
1: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा देखी। पारंपरिक रस्में पूरे होने के बाद भाई बहन की ये मूर्तियां श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक अपनी पवित्र वापसी यात्रा पर निकली। इस दौरान भजन कीर्तन और पारंपरिक वाद्य यंत्र की थाप गूंज रही थी। सालाना रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजय रस्म के साथ होगा, जिसमें मूर्तियों को औपचारिक रूप से श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाएगा और इस तरह ये भव्य आध्यात्मिक उत्सव सम्पन्न होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: चीन के हांगझोउ में निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गई। चीन की याओ कियानुक सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन आज पुरुषों की 50 मीटर ब्रेक स्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर हैं। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हड़ताल पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर आपत्ति व्यक्त की। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कश्मीर संबंधी टिप्पणियों को खारिज किया। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सीमित होते दायरे की चेतावनी दी, कहा मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। अमेरिका ने चीन, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और 57 अन्य व्यापारिक साझेदारों से आयात पर नए टैरिफ लगाए। और भारत की संयम ने निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Saira Mujtaba with World News. The headlines. India objects to UN's silence on strike in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, rejects Pakistan's Kashmir remarks at Security Council. Pakistan's Rights Commission says media freedom in the country is under threat, warns of shrinking space for independent journalism. Bangladesh President Mohammad Shahabuddin resigns on health grounds. US imposes fresh tariffs on imports from China, European Union, UK and 57 other trading partners. Spain declares national emergency following wildfires across Madrid.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक

0: कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग UPSC के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। NTA ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations.

पे छुअरी, जरा इसे तो बता रे। गालों पर, बालों पर, ना ना।